0: बस एक औरत है, हाँ इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो, सिखी विच रह के।
4: उदों जिन कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है, उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां, ते तुहाडे लोड दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा कर्जी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओ केड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: Would you like to hear more stories like this one? Come to seeknet.com/stories.
1: Sikhidi e nishani Shabad Guru Ram Das Ji Vyakhya Jagdeep Singh Chitrakar Pardeep Singh
2: Simar Singh Kirpa Kaur Utho Utho Ki Tuhanu Vadhiya Neend Aayi
3: Akhirli Cheez Jehdi Mainu Yaad Hai Mammi Ji Ne करो बेनती गाना शुरू ही किता सी ते मेनू नींद आ गई
4: अजीत वीर जी मेनू बड़ा चंगा लगता है जदो तुसी मेनू जगांदे हो
2: आओ वेखिए पहला कौन स्नान करके पाठ करन ली तैयार हुंदा है
3: मैं जित जावांगा
4: मम्मी जी कि मैं बबल पाथ ले सकती हूँ?
2: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुम्हें प्रसाद सवाइये करेंगे।
3: मैंनो बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए, ताकि मैं नाश्ता कर सका।
4: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
2: आओ अनंत साहिब करिए
3: मैं उच्ची उच्ची गावांगा
4: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया
2: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है
3: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन
5: मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकता हाँ
4: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे को तुहाडे वर्गे वीरन
2: ओ वेको गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए
3: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लग दिया हन
4: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी
2: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहेगुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है
3: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए
4: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है